0: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल।

होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

FM 100.6 MHz से इस वे 10 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगला पंजाब। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेब्स ऐप राही ते न्यूज़ ऐप मोबाइल ऑन AIR न्यूज़ ऑन AIR राही भी सुन सकते हो। सो इसी जानकारी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम से इस वेले इस वेले 6:55 हो रहे हैं। हुण तो बस कुछ ही देर बाद संस्कृत में समाचार सुनोगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्. प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है. आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें.
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य निरन्तरप्रयासै भारतं पश्चिमैशिया सङ्घर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जासङ्कटस्य प्रभावीरीत्या प्रबन्धनं करोति. प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति. असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः. तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात्, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति. स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति. द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः. स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्डदेशं सम्प्राप्स्यति. 17,2000 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्डदेशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति. यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडनदेशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति. श्रीमोदी स्वीडनदेशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति. विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविधक्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति.

कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। सरणी से प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर के नाते हाजिर है। प्रोग्राम सुनने वाले नु पूनम दा नमस्कार। वाकई जदों सवेर की शुरुआत होंदी है, इंसान की मिठी गहरी नींद तो बाद अख खुलती है, तो अजकल कोयल की मिठी आवाज़ सुनने मिलती है। इंज लगता है कि किसी ने खूबसूरत आवाज़ विच गा के सुरमई सवेर की, संगीतमई सवेर की शुरुआत की होवे। तो इस म्यूजिकल गुड मॉर्निंग का जदों असी जिक्र करते हैं तो फिर इन्हां पंछियों की मिठी आवाज़, इन्हां दी चहचहाट का जिक्र करना तो बनता ही है, क्योंकि कुदरत दे ए ओ संगीतकार ने, कुदरत दे ओ ए गायक ने जो साड़ी सवेर नूं बहुत ही सुरीला बना देंदे ने। ये कुदरत दी खूबसूरत निशानियां, कुदरत दी खूबसूरत सौगातां सानूं याद दिलाउंदियां ने कि इंसान चाहे किन्नी भी आधुनिकता दी मशीनीकरण दी दौड़ दे विच अगे क्यों ना निकल जावे, पर ये कुदरत दीआं खूबसूरत आवाज़ां ते इन्हां आवाज़ां दा, इन्हां जीआं दा होना साडे जीवन दे विच किन्ना मायने रखदा है। ये सानूं ये भी याद दिलाउंदा है कि असीं अजकल जिंदगी दी जो मशरूफियत है या फिर जिंदगी दे विच इलैक्ट्रिक डिवाइसिस दी जो आवाज़ां ने या फिर दिमाग दे विच चलन वाला शोर है, उस तो परां हो के कुछ पल कुदरत दे नाल वी बिताउणे ने। खास तौर पर सवेर के उस शांतमई पल जदों कुदरत अपने खूबसूरत रूप दे विच हुंदी है, वो पल जदों असी शांत हो के खुद दे नाल गलबात कर सकते हैं, वो पल जदों असी दिन भर दे शोर नू दरकिनार करके अपने मन की शांति नू आवाज़ दे सकते हैं ते खुद दे नाल एक संवाद रचा सकते हैं। सो ये उही पल है, आओ कुछ पल कुदरत दी गोदी विच बिताइए, इन्हां खूबसूरत मिठियां आवाज़ां नू सुनिए, दिन की खूबसूरत शुरुआत करिए। काम काज तो पूरे दिन चलते रहेंगे, तो यकीन मनो कि जेकर ये पल असी खूबसूरत बिताया, इन्हां पलों नू खूबसूरत तरीके दे नाल शुरुआत की सवेर की, तो पूरा दिन बहुत खूबसूरत बीतेगा। मन्ना डे हरिंद्र नाथ किशोर कुमार हुणां दी आवाज़ विच ये खूबसूरत गीत इस तरह की सवेर की, दिन की शुरुआत बारे ते सवेर के उजाले बारे बहुत खूबसूरती नाल गलबात कर रहे हैं। आओ सुनते हैं।

नचैया तोप के इंद्र चढ़ो गज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: पूरब से आता रे।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत संदेश ते इस गीत दे विच किन्ने ही संदेश सुनने नु मिले। बावरची फिल्म का एक गीत से ते गुलजार दी फिल्म से जिस विच दिखाउण दी कोशिश की गई सी कि असी जिंदगी दियां छोटियां मोटियां परेशानियां नू एक दूसरे दे नाल शिकवे शिकायतां नू जेकर भुला दीए तां जिंदगी इन्नी खूबसूरत है। जेकर असी इस नू भुला दिंदे हां तां किन्ना कुछ ही हासिल कर लैंदे हां। इस दे उल्ट हुंदा कई वार इंज है कि असी इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां नू ही ज़्यादा तरजीह दे दिंदे हां ते अपने रिश्ते अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट लिए रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: बिल्कुल, ये सुनेहा सिबाई बारे से सुनाने साझा करते हैं ताकि असी मोबाइल इंटरनेट के जरिए होने वाले फ्रॉड तो सावधान रहिए, सुचेत रहिए, सतर्क रहिए ते असी सुरक्षित हो के अपना मोबाइल चला सकी। वैसे जिंदगी जो भी कोई इम्तिहान होंदा है तो उसका ईमानदारी दे नाल, मेहनत दे नाल, जागरूकता दे नाल जेकर असी तैयारी करिए तो नतीजे अपने आप ही वधिया आने लगते हैं। तो प्रीख्या के विद्यार्थी जो मेहनत तो ईमानदारी खुद पर विश्वास रखदियाँ होफॉर्म करते हैं तो कई गुणा बेहतर होकर भविख के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। इस दे उल्ट बहुत ही बार इंज भी होंगे है कि असी जो तैयारी तो मेहनत तो बचते हाँ तो गलत तरीके स्थिति तो बच के निकलण की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट अपना चाहते हैं। अजक कॉलेजस के प्रीख्यावान चल रही ने, अनफेयर मीनस केस इस दौरान बहुत सामने आते हैं, यानी कि नकल करद हो विद्यार्थी का फड़े जाना जिस उसका भविख तबाह हो सकता है। सो बेहतर है कि तैयारी करके ही प्रीख्या दी जाए तो UMC जे केसिस तो बचा जाए। इस बहुत ही जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बारे प्रोग्राम के सुनेहा दे रहे हैं IK गुजराल PTU जलंधर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील मित्तल।
5: देखो, अनफेयर मीन्स भी एक गंदी रिवायत है जेडी के स्टूडेंट्स दे हक च कदी भी नहीं आंदी
4: जी।
5: और बच्चे कुछ भटक जांदे है अपने पढ़ाई दे तरीकियां तो और वो सपोर्ट लेनी चाहते हैं कि सानू किसी ना किसी तरीके नाल पास हो जाइए गलत तरीके अपने।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सोने से प्रोग्राम तो इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। आज अंतरराष्ट्रीय तौर ते नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगल होना नू याद किया जा रहा है, जिन्हां ने इस पेशे दी, इस खूबसूरत सेवा दी, समर्पण भावना दी शुरुआत दे नाल इस दिन नू कह सकते हैं कि जन्म दिता सी। फ्लोरेंस नाइटिंगल नू लेडी विद अ लैम्प भी कहा जाता सी, क्योंकि जंग दे दौरान उन्हां नू देखा गया कि वह जख्मी सिपाहियों की सेवा करते सन। रात दे वेले जदों सारे सौ जांदे सन तां उह हाथ विच लैंप लै के हॉस्पिटल दे वार्डां विच मरीज़ां नूं देखण जांदे सन। जख्मी सिपाही उन्हां नूं देख के हौसला महसूस करदे सन। उन्हां दी देखभाल, सफाई ते मरीज़ां दी दया ने नर्सिंग दे खेतर नूं नवीं पहचान दित्ती है। सो उह लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगल अज दुनिया भर दे उन्हां नर्सिंग दे खेतर दे विच नर्सस नूं प्रेरणा दित्ती उन्होंने कि वह भी इसी तरह सेवा भावना दे नाल इस प्रोफेशन दे विच आ सकते ने। फ्लोरेंस नाइटिंगल दे हाथ विच चाहे लैंप सी पर वह प्रतीक सी कि वह अपनी सेवा दे नाल समाज दे विच रोशनी लैके आ सकते ने। जो मरीज़ किसी भी दुख दे नाल जूझ रहे ने उन्हां दे जीवन चो हनेरा दूर कर सकते ने, इसलिए दुनिया ने उन्होंने लेडी विद द लैंप कहा। सो ये जो नर्सिस ने साड़ी जिंदगी दे विच अजे मोड़ ते सानू जदों मिलदियां ने, जदों असी बीमार हुंदे आ, जदों जिंदगी दे विच इन्हां दुखां नाल जूझ रहे हुंदे आ, तां असी सारे महसूस करदे आ कि साड़ी किन्नी सेवा भावना दे नाल ओह लगातार डटे रहिंदे ने। उस वक्त भी जदों डॉक्टर मौजूद नहीं हुंदा, नर्स हमेशा तुहाडे नाल मौजूद हुंदी है। अजे वेले जदों हस्पताल दे कमरे दे विच चुप छाई हुंदी है, तां उस वेले नर्स सानू ये कहती हुई सुनाई दिंदी है कि सब ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ दवाई नहीं दिंदी, हौसला भी दिंदी है। वो सिर्फ जख्मां ते पट्टी नहीं करती, बल्कि दिलां दे डर भी सहलाउंदी है। ते रात दे हनेरे विच जदों सारे अपने घरां विच आराम कर रहे हुंदे ने, एक नर्स ही हुंदी है जो हस्पताल दे किसी कोने दे विच जाग रही हुंदी है, लगातार शिफ्ट्स कर रही हुंदी है, ते हर एक साह ते नज़र रख रही हुंदी है, तसली दे रही होंगी है, तो अपनी थकावट लुका के सेवा भावना के नाल मुस्कुराते हुए काम

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 3री सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी

0: शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: अध्यक्षों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा।

0: मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister

तेरे हाथ से या चलन फूल चढ़िया, तेरे हाथ से या चलन फूल चढ़िया, ते एक बारी हंस के बखा, ते एक बारी हंस के बखा, तेरे

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उनानु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे। आरबीआई कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।

गाइड फिल्म दा ये बेहद खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी उन्होंने आवाज़ में तुम सुनिया। देवानंद ते वहीदा रहमान इस फिल्म दे मुख करा किरदार सन। देवानंद होनी पहला रोजी दे किरदार दे लिए किसी होर एक्ट्रेस नूं सोच रहे सन, पर आखिर दे विच उन्होंने वहीदा रहमान नूं ही कास्ट किया। तो ये उन्हों का फैसला हिस्टोरिक भी साबित होया। अज भी फिल्म क्रिटिक्स इस फिल्म नूं भारतीय सिनेमा दीआं सब तो खूबसूरत आर्टिस्टिक ते सार्थक फिल्मां दे विच शामिल करदे ने। इस फिल्म का जो संदेश है, अपनी पहचान, अपनी आज़ादी, अध्यात्मिकता, इहो जिहे जो सुनेहे ये फिल्म दिंदी है वह अज भी सार्थक ने, बल्कि असीं कह सकते हैं कि अज दे जीवन दे विच होर भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए ने। गाइड फिल्म दे सारे ही गीत सुपरहिट रहे सन। इस फिल्म चो हुण प्रोग्राम दा अगला गीत लता मंगेशकर हुण दी आवाज़ में सुनते हैं।

इस फिल्म के खूबसूरती यादगार डायलॉग्स विजय आनंद ने लिखे सन। विजय आनंद ने हर किरदार नू बेहद ही संतुलन दे नाल इस फिल्म दे विच साध्या सी। ये फिल्म जदों बनाई गई सी उस दौर दे विच महिलावां नू आज़ादी नहीं सी, पर इस नॉवल दे विच महिलावां नू जिस तरह आज़ादी की गल की गई सी, वहीदा रहमान उन्हां दा कहना है कि वह खुद हैरान हो गए सन कि किवें एक भारतीय लेखक महिलावां दी आज़ादी बारे इस तरह गल कर सकता है। वहीदा रहमान हुणा ने इस फिल्म दे लई बहुत तैयारी भी की सी, खास तौर पर क्लासिकल डांस दे लई उन्होंने काफ़ी तैयारी की सी। ते इस तरह उन्होंने इस भूमिका दे लई खुद नूं पूरी तरह समर्पित किया। ते उसका अंजाम ये है कि इस भूमिका नूं अज भी मिसाल दे तौर पर याद किया जाता है। हुण इस फिल्म दे विच जो महिलावां दी आज़ादी की गल की गई सी

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित

0: करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

0: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
8: इन्हें हमारा सलाम।
7: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
9: साथियों नमस्कार।
7: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
9: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
7: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
9: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
7: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
9: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
7: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
9: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
7: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
9: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर

0: नवंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी, तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था, ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए।

0: उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: तुसी सुन रहे सी NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।
5: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा खूबसूरत उपराला प्रोग्राम खेड संसार, हर मंगलवार रात 9:30 बजे। क्रिकेट स्टेडियम च कौन कर रहा चौकियां छिक्कियां दी बरसात, हॉकी च किन्ने गोल दाग के किन्नू दित्ती मात, कुश्ती दे गद्दियां ते दाल आके कौन जित्तिया बाजी, ते किन्ने सुनहरे निशाने ला के देशवासियां नू कीता राजी। खेड मैदानां दी दिलचस्प कहानी, खिडारियां दा जनून उन्हां दी ही जुबानी। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने आज दिया हुण तक दिया मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दरमियान विदेशी मुद्रा बचाने लई लोगों नूं ईंधन अते विदेशी उत्पादों की वरतों घटाउण की अपील की है। सीनियर बीजेपी नेता हिम्मत बिस्वास शर्मा अज गुवाहाटी च असाम के मुख्यमंत्री वजो सहुं चुकणगे। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने दक्षणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले विच पछमी बंगाल के साबका मंत्री सुजीत बसू नूं गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिना दौरे ते रवाना होणगे। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश कोल अनाज दे ढुकवें भंडार मौजूद ने, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पंजाब राज चोण कमिश्नर वालों सूबे दियां 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया, पास फीसद

94.52% रही कुड़ियां वालों मुंडियां नूं पिछे छड़ दियां। फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले विच अमन कानून दी व्यवस्था नूं बनाई रखण लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजिहियां लाइसेंस शुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुक्म जारी कीते। ते IPL क्रिकेट विच अज गुजरात टाइटन्स दा मुकाबला अहमदाबाद च शामी 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद नाल होएगा। ए सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम हैलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम च अस तुहाडे पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत सुना रहे हैं। तुसीं कॉल कर रहे हो 01 84 143 173 नंबर ते। नाल ही तुहानूं इह वी याद दिला दिए कि तुसीं तां मग जलंधर पैंदी प्रोग्राम दे लई 9465536077 यानी कि 9465536077 नंबर ते वट्सअप स्नेह भेज सकते हो। गल करदे आं हुण। हैलो
1: हेलो पूनम मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो?
1: सुखबीर सिंह छाजली बोलदा मैम, सुरू तो।
0: छाजली जी, की हाल चाल ने?
1: हाल चाल बहुत वधिया ने, तुसी दसो ठीक ठाक हो जी?
0: बहुत वधिया जी।
1: बस गर्मी होण लग गई हुण, हाल चाल
0: गर्मी
1: तां
0: तो
1: वधिया।
0: राहत है जी बड़े दिनां तो।
1: ना साडे इधर है थोड़ा संगरूर जिले च जी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: देखो
1: हाँ
0: गर्मी दे मौसम विच गर्मी होएगी।
1: हाँ
0: हरेक
1: जी
0: मौसम दा जिहड़ा ये अपना रंग हुंदा है ना, ये बरकरार भी रहना चाहीदा है।
1: हाँ जी हाँ माता रेडियो दा है जी नवा एक।
0: अच्छा, मुबारकां फिर
1: हाँ
0: तो।
1: जी धन्यवाद मैडम जी, बहुत वधिया रेडियो है जी।
0: अच्छा चलो, वधिया गल है जी।
1: हाँ जी हाँ, वो पहला ना फुट गया सी, नवा होर लेंदा महा चल कुछ नहीं हुंदा,
0: चलो वधिया
1: शौक
0: गल है
1: राखी
0: जी।
1: मुंड
0: रेडियो
1: नहीं
0: तो
1: हुंदा
0: साथ
1: जी।
0: बनिया रहना चाहिए। रेडियो जे खराब हो जाए, टूट जाए, तो फिर नवा लेना तो जरूरी हो ही जाता है।
1: हाँ जी हाँ, शौक दा कोई मुद्दा नहीं हुंदा मैडम जी।
0: बिल्कुल नहीं हुंदा जी, बिल्कुल सही
1: हाँ
0: क्या।
1: जी हाँ
0: शाजली
1: जी
0: जी, गाना
1: हाँ
0: कहड़ा सुनोगे तुसी अज?
1: मैडम, जे दिल लगी मूवी दा लावे जी कोई भी गाना।
0: ला दिंदे हां जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: ठीक है मैम, थैंक यू, बाय।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टे के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औडिहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़क कर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। समा हो गया है तुहाडे सब दे मन पसंदीदा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दा। आओ फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। थोड़ा दोस्त गौरव है तुहाडे नाल 11 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक। सुनते हैं प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
1: जी एक बार फिर मुड़ स्वागत है तुहाड़ा सारयां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दे विच। बहुत सारे मैसेज कट्ठे हो गए हैं, सानू बहुत तेजी दे नाल अगे भजना पैना, लेकिन गीत जिहड़े ने ओह जरूर सुनावांगा तुहानू। पिंड कमड़िया तो सूरतगढ़ तो यानी कि साढ़े नाल जगदीश ढुकिया जी, जगदीश ढुकिया, प्रमिला, ज्योति, तमन्ना, विष्णु, शिवम और इन्होंने फरमाइश की सी गुरदास मान जी दे गीत दी। गुरदास मान जी दा गीत आपां तुहानू पहले ही सुना दिता है, मैसेज किया बहुत बहुत धन्यवाद।

वरिंदर कालड़ा, रेखा कालड़ा, परीक्षित प्राचीए, मेन बाज़ार, मंडी लदुका, फाजिलगा तो साढ़े नाल जुड़े ने। शुक्रिया जी जी आया नू इस प्रोग्राम दे विच। मजनू दे टिले तो कमल बलूजा, मधु बलूजा, उमंग सागर, आकांक्षा, गुड़िया माही ते इशिता, ये भी जुड़ गए ने। इन्हां सारिआं दा भी जी आया नू इसे तरह मैसेज सानू जिहड़े ने जरूर करना, और गीत दी फरमाइश कीती है, गीत जरूर चलावांगे। कीर्ति वर्मा, सिदक वर्मा, प्रियांशी वर्मा ते सारा दा सारा वर्मा परिवार ये जुड़ गया साढ़े नाल हनुमानगढ़ फाजिलगा तो। फाजिलगा वालियां दे अज मैसेज बहुत आ रहे ने, लगता है कि प्यार फाजिलगा वालियां दा साढ़े नाल ज़्यादा। एक होर फाजिलगा तो मैसेज पहुँचा जी, जिन्हों कुड़ियाणा तो किया है, कहिंदे सति श्री अकाल सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाणा, मनजीत कौर और नाल इन्हां दे बहुत सारे होर स्रोते जुड़े ने, जिहदे विचों इन्हां दा पोता गुरशब्द है और जीत सिंह कुड़ियाणा है। समूह बराड़ परिवार कहिंदे ने कि हनुमानगढ़ तो तुहाडे नाल जुड़े हाँ और तुहाडा प्रोग्राम बहुत पसंद करीदा, इसे तरह साढ़े प्रोग्राम दे विच साढ़े गीत शामिल करते रहना। लो जी, हरियाणे तो बिट्टू भाटिया ते रीटा भाटिया, इन्होंने भी नमस्कार कही है और कहिंदे ने कि प्रोग्राम बहुत चंगा लग रहा, इसे तरह वधिया वधिया पंजाबी गीत चलांदे रहो। चकला बाज़ार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू स्माइल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव, सुनीता बंटी, आरजू महक खुशदिल ते पूरा दा पूरा खुशदिल परिवार, इन्हों का मैसेज जदों भी पढ़ते हैं ना तो दिल भी खुश हो जाता है। और अगले मैसेज दे विच चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ते उन्हां दे बहुत सारे साथी जुड़े ने, इन्हां सारिआं नूं भी असीं जी आयां नूं कहिंदे आ। बस रुतो इसे तरह तुसीं जिहड़े मैसेज ने करदे रहो और तुहाडा धन्नवाद शुक्रिया असीं करदे रहांगे, ना असीं कर रहे हैं बल्कि बी पराग होरी भी कर रहे हैं जी हाँ। तुहाडी सारिआं दी फरमाइश ते अगला गीत चलान जा रहे हैं बी पराग दा।

0: ਜੀ ਕਲੇਰ ਕੰਠ ਤੇ ਗਾਏ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀ ਆਰ ਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: मैं श्री हिमंता बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायक

0: विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स से असी जुड़े हुए हैं आकाशवाणी जलंधर तो। और समा हो गया भैणा दे अपने प्रोग्राम वस्ते वेड़े का, तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: जी इसी तरह ही बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां अज मेरा मन कर रहा सी मैं सांझियां करां, पर बड़े गीत ने जिहड़े इस लिपण दे उत्ते बने होए ने। कहिंदे लिप्पिया सवारिया चौं तरा डेकां फुल्लियां वे वीरे चीरे वालिया, पुत जिन्हां दी नौकरी मामा भुल्लियां वी चीरे वालिया।
2: सो
1: हर गल दे विच लिपण दी गल आ रही है ते नालों नाल इक सादी जिंदगी दी वी गल इत्थे चल रही है। हुण असीं इक गीत वी बड़ा खूबसूरत सुणिया, हुण उहदे विच कुट कुट बाजरा मैं कुठे
2: लेकिन घड़ी दी सुइयां सानू इशारा कर रहियां ने कि हुण सानू सारिआं तों विदा लैणी चाहीदी है। चलिए फिर अमन
1: जी, बिलकुल हुण जाणा ही पैणा। सो दुबारा फिर मिलण दे वादे दे नाल हुण मैं अमनप्रीत अज दे प्रोग्राम इत्थे खतम कर रही हां ते मेरे नाल खतम कर रहे ने
2: जी गुरप्रीत नूं वी दे दिओ इजाजत नाल दी नाल। हुण चलदे हां फिर जी,
1: नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक दोपहर के 1 बज रहे हैं तो आओ हुण तुहानूं लै चलदे हां साडे दिल्ली केंद्र जिथों तुसीं सुणोगे समाचार हिंदी दे विच।
4: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
5: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
4: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के

0: अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। श्रोतो आओ हुण असी तुहानू साढ़े बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा देंदे चलिए।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ फाजिलका, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ कसौली, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर, DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। और समा हो गया है प्रदेशक खबरां दा, ते आओ सुनदे हां प्रदेशक खबरां।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी यादविंदर सिंह तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशियाई संकट दरमियान विदेशी सिक्के की बचत करने लिए लोगों नूं ईंधन बचाउण ते विदेशी उत्पादों की वरतों घटाउण की अपील की है। कल गुजरात के वडोदरा च एक जनतक रैली नूं संबोधन करदिया श्री मोदी ने पेट्रोल ते डीजल की खपत घटाउण अते घर तों कम करन, ऑनलाइन क्लासा ते वर्चुअल मीटिंगां वर्गे कोविड दौर के उपावां नूं अपनाउण की अपनी अपील नूं दोहराया।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
3: केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने लखां रुपए की रिश्वत लैन देन के मामले च बीती देर रात मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर च छापामारी की है। यह कार्रवाई भ्रिष्टाचार रोकू कानून न संबंधित एक मामले च चंडीगढ़ आधारित CBI टीम ने की है। इस संबंध में मुक्तसर जिले के मलोट शहर च भी छापामारी की गई है। सूत्रों मुताबक मलोट के दो व्यक्तियों समेत चंडीगढ़ तो भी होर लोगों CBI ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने साडे जलंधर वाले पत्रकार को दसिया है कि एक व्यक्ति नूं CBI ने हिरासत च लिया है ते जेकर ब्यूरो दे किसी भी व्यक्ति दा नां सामने आउंदा है तां CBI नाल पूरा सहयोग कीता जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने महान सिख योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सरहंद फतेह दिवस मौके ते देशवासियों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री शाह ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बेइंसाफी विरुद्ध संघर्ष की अगवाई की अते स्वैमान हिम्मत ते धर्म की राखी का सुनेहा दिता। उन्होंने कहा कि अणगिनत अत्याचार सहन के बावजूद बाबा जी ने कोई होर धर्म नहीं अपनाया। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने जीवन हमेशा देश ते धर्म की राखी लई प्रेरणा स्रोत बनिया रहेगा। महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों जालम हकूमत की इट नाल इट खड़काउण ते सरहंद दिवस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी उन्होंने नमन किया है ते कहा है कि उन्होंने शहादत हमेशा लिए यादगारी रहेगी। महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों अज के दिन सन 1710 विच सरहंद फतेह करन दी याद विच सरहंद फतेह मार्च मोहाली के पिंड चप्पड़चिड़ी तो रवाना होया। इस तो पहला चप्पड़चिड़ी स्थित गुरद्वारा साहिब च अखंड पाठ के भोग पा के अरदास की गई। इस मौके ढाडी जथिया ने वारां दा गायन किया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज ते होर शख्सियतां मौजूद सन। फतेह मार्च विच दूरों दूरों आई संगत पालकी साहिब के नाल नाल चल रही सी अते गुरबाणी का समूहिक गायन किया जा रहा सी। पंजाब दे राजपाल ते UT चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने समाज भलाई इस्त्री ते बाल विकास विभाग चंडीगढ़ प्रशासन वालों भगवान महावीर विकलांग सहायता कमेटी के सहयोग नाल दिव्यांग जनां लई लगाए गए 3 दिनां दे मुफ्त मुलांकन ते फिटमेंट कैंप का

जय हिंद फौजी वीरों, थोड़ा सारिया का अपना रेडियो बिली गौरव थोड़ा सारिया का ही करता है स्वागत। यो प्रोग्राम है जिदे विच असी खास करके अपने फौजी वीरां दे मनोरंजन लई गीत संगीत का प्रबंध करते हैं। वो फौजी वीर जिहड़े देश दे लई देश दी सरहदां दे उपर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, अपने आप नूं अपनी फैमिली नूं पिछे रख के अपने देश नूं अग्गे रखते हैं और 24 घंटे चौकन्ने रहिंदे ने तां कि असी इत्थे आराम दे नाल सो सकीए। तो तुहाडा जिन्ना भी फौजी वीरो धन्नवाद करिए उन्ना घट, और असी तुहाडे लई तुहाडे मनोरंजन दे लई इह स्पैशल प्रोग्राम डेडिकेट किया, यानी तुहानूं समर्पित किया। तो फिर प्रोग्राम शुरू करिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच बहुत सारे नवे और पुराने गीत तुहाडे नाल सांझे करने ने, जिहड़े तुहाडे दिल दे नाल ने, दिल दे अंदर ने, और जिन्हां बारे तुसीं बहुत कुछ जानते हो और बहुत कुछ जानना भी चाहते हो। तो अज दा जिहड़ा पहला गीत चलान जा रहे हैं ना, वो गीत बहुत ही चुनिंदा गीतां दे विचों एक है, क्योंकि उस गीत नूं गाया है देवानंद साहब ने। जी हाँ, तुसीं कहो कि देवानंद साहब ने ये गीत गाया, ये किदां हो गया? जी जदों तुसीं सुनोगे ना तो तुहानूं पता लग जाएगा कि देवानंद साहब की भी इहदे विच आवाज़ है। या और आशा भोंसले ने नाल इस गीत नूं पूरा किया। फिल्म है महल, महल फिल्म दे विच जिहड़ा गीत है देवानंद और आशा भोंसले की आवाज़ दे विच। आशा भोंसले तुसी सारे जानते हो, और आनंद बख्शी ने इस गीत दे जिहड़े बोल सन लिखे सी, कल्याण जी, आनंद जी।

इस गीत नू कंपोज़ करते हुए तुहानू मिलणगे, यानी कि संगीतबद्ध करते हुए मिलणगे। और आशा भोंसले जी की गल करिए, एक स्वर्णमय सफ़र यानी कि एक सुनहरा सफ़र जड़ा है उदी गल हुंदी है। पिछे जी वो सानू छड़ के चलाना कर गए, एक बहुत वड्डा घाटा जड़ा कदी भरिया नहीं जा सकता फिल्म इंडस्ट्री नू, म्यूजिक इंडस्ट्री नू, वो है। लेकिन उन्हां दे गाए हुए जड़े गीत ने वो हजे तक भी साडे दिलां दे विच ने। तो आओ फिर प्रोग्राम दी जड़ी शुरुआत है वो इसे ही गीत दे नाल करदे हां, और बहुत सारियां गल्लां होर करांगे असीं तुहाडे नाल। ये जड़ी फिल्म दी मैं गल कर रहा हां, ये एक गौथिक हॉरर स्टोरी सी, यानी पुनर जन्म दी कहानी। और पुनर जन्म दी एक मान्यता दे अनुसार इस फिल्म जड़ी सी वो बनेगी, और बहुत सारे होर भी इहदे विच जिहड़े किरदार सी ओह निभाए गए सन। ते करिए फिर प्रोग्राम दी शुरुआत इस खास गीत दे नाल। तुहाडा अपना दोस्त गौरव पेश कर रहा प्रोग्राम फौजी वीरा लई।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

जी सरकार, आइए, थोड़ा स्वागत है आकाशवाणी जलंधर दे वेड़े प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरा लई। फौजी वीरो, जे गीत संगीत की गल कर रहे सी तां अज हॉरर जोनर जड़ा है, यानी कि जड़ियाँ डरावनियाँ फिल्मां है उन्हां दे गीत संगीत नूं चलाण दा मेरा दिल कर रहा सी, तुहाडे नाल ओह गीत सांझे करां। इदां दीआं फिल्मां जिहड़ियां पुनर्जन्म दे विच या जादू टोने दे उपर बणियां और उन्हां दे मशहूर गीत जिहड़े ने ओह तुहाडे नाल सांझे कर रहे हैं। तो अगला जिहड़ा गीत तुहानूं सुणाउण जा रहा ना, वह सुणाउण जा रहा इदां दी ही सस्पेंस हॉरर फिल्म नील कमल दा। 1968 दे विच फिल्म आई सी जिहदे विच वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार जिहड़े ने इन्हां ने महत्वपूर्ण भूमिकावां निभाईआं सन। और ये जिहड़ी फिल्म है ये भी पुनर्जन्म की कहानी सी। वहीदा रहमान सीता जिहड़े रात नूं नींद चलन दी उन्हां दी बीमारी हुंदी है और एक पुराने महल दे विच पहुँच जाते हैं जिथे एक आत्मा राजकुमार, सोचो आत्मा वह भी राजकुमार जी दी ज्ञानी दी आवाज़ दे विच जिहड़ी आत्मा उन्हां नूं पुकारदी है। तो ये गीत बहुत सुपर हिट हुए ने। अगर मैं गीतां दी गल करां इस फिल्म दी, तो इन्हां दा एक गीत जिहड़ा आलमोस्ट हर विआह दे उपर चलदा है। तुसीं कहोगे वी हॉरर फिल्म दा गीत हर विआह ते चलदा, जी हाँ, वह है बाबुल की दुआएं लेती जा। इदां दा गीत जदों भी डोली जांदी है तां हर जिहड़ा शख्स है उहदे मूँह दे विच्चों ही ये गल निकलदी है। और इहदा एक होर गीत भी है इस फिल्म दा जिहनूं अज भी लोग जदों अपने न्याणे नूं अपने बच्चियां नूं प्यार करदे आ या लोरी गाउंदे ना, वह गाउंदे ने उसी तुझे सूरज कहूँ या चंदा। और हर गीत इस मूवी का सुपर हिट रहा है। जिहड़ा गीत मैं लेकिन तुहानू सुनाउण जा रहा वह गीत राजकुमार दे उत्ते फिल्माया गया है और फिल्म की रूहानी ते रहस्यमई थीम नूं दर्शाउंदा है। वह किहड़ा गीत है जदों तुसीं सुनोगे उदों तुहानू पता लगेगा। उस गीत नूं गाया है मुहम्मद रफ़ी होरां ने और लिखिया है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रवि ने। तो फिर सुनिए ए गीत।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार।

0: आर यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजने की आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जाएगा।
1: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानु फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: प्रोग्राम चल रहा जी फौजी वीर वाले, और फौजी वीरों अज असी गल कर रहे हैं खास ओ फिल्म दे गीतां दी जिहड़े किते ना किते डरावनी फिल्मां चों लए गए ने। ते बहुत सारे गीत इदां दे ने जिहड़े हिट भी होए ने, और बाद विच सानूं पता लगदा है कि ओ किते ना किते इदां दी फिल्मां चों सी जिहड़े असी बहुत घट सुणदे हां या देखदे हां, क्योंकि डर लगता ना देखने वेले। अगला जिहड़ा गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं ना, वो भी इदां दी ही एक फिल्म दा, और जे उस फिल्म दी गल करां तां वो फिल्म डरांदी भी है और किते ना किते साढ़े दिल नूं बहुत छूंदी भी है। जी हाँ, जिस फिल्म दी मैं गल कर रहा ना, उस फिल्म दा जिहड़ा ये गीत है ना, ये सदाबहार गीतां दे विच्चों एक है। हुण तुसीं कहोगे कि ये किदां हो सकता है? जी हाँ, वो गीत है 20 साल बाद 1962 दे विच एक फिल्म आई सी, और कमाल दी गल है इसे नाम दीआं दो फिल्मां है। 20 साल बाद एक डिंपल कबाड़िया वाली फिल्म भी आई सी 80 दे दशक दे नेड़े तेड़े, और दूजी है 1962 दे नेड़े तेड़े आई ये फिल्म 20 साल बाद। और ये विश्वजीत और वहीदा रहमान जिहड़ियां ने मुख भूमिकावां दे विच सन, और हेमंत कुमार ने अपनी संगीत दा जिहड़ा जादू है ये बिखेरिया सी। और जिहड़ा गीत सुनाउण जा रहे हैं ना, वह गीत जदों तुसीं सुनोगे ते तुहाडे दिल दीआं जिहड़ियां तारां है ना वह नाल जरूर खड़कणगीआं, क्योंकि वह दीप ईप जलांदा वह गीत है। लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म 20 साल बाद।

0: સમસ્ત દેશવાસીઓને શુભકામનાઓ આદિત્યને. એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ વિશે શ્રી શાહને કહ્યા કે બાબા બંદા સિંહ બહાદુરજીને બે ઇન્સાફી વિરુદ્ધ સંઘર્ષથી અગવાઈ કીધી, મુગલાનો હરાયા તે સ્વયંમાણ હિંમત તે ધરમથી રખ્યા હતા સંદેશ દીધા. પંજાબ દે મુખ્યમંત્રી પવનસિંહ માનની ભી સરહંદ ફતેહ દિવસ તે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ રાહીં મહાન સિખ જરનૈલ બાબા બંદા સિંહ બહાદુરજી અને સમૂહ શહીદાં નું નમન કીધા. IPL ક્રિકેટ વિચ અજ ગુજરાત ટાઇટન્સ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ. ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ, CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ. ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਏ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 15 ਨਰਸਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ. CBI ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ. ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ. ਨਮਸਕਾਰ.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं कलीम अहमद. जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है. नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मंसूख कर दिया गया है. CBI से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है. CBI ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है. और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. अब खबरें तफसील से. BJP के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया. गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया. ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई. डॉक्टर सरमा के साथ 4 अरकान असम्बली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया. इनमें BJP के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं. वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी उजरा और NDA की सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की. इसके साथ ही डॉक्टर सरमा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है. कौमी जमहूरी इतिहाद NDA इस रियासत में लगातार तीसरी बार इकतदार में आया है. उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असम्बली में 102 सीटें हासिल की थीं. भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद AGP और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF को 10-10 सीटें हासिल हुई थीं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे. अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे. वज़ीर आज़म इसी रोज़ नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वज़ीर आज़म रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे. स्वीडन में जनाब मोदी वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे. इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे. दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे. वजारत खारजा ने कहा है कि

वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मज़ीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फ़ैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि ये फ़ैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निज़ाम मुनहसर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकज़ी ब्यूरो CBI को सौंपने का फ़ैसला किया है ताकि पेपर लीक के इल्ज़ाम की भरपूर तरीके से जाँच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो CBI को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। NTA ने कहा कि यह इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज़ में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने मगरबी बंगाल के वजीरे आला सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में CBI ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान CBI की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहां पर कत्ल का यह वाकया पेश आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नौमुंतखब वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी के ज़ेर सदारत पहली काबीना मीटिंग के फ़ैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी, जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफ़्ज़ान सेहत को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को उड़ीसा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे, जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि BJP को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर BJP को मज़ीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। यह अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। यह अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और रज़ाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों, मददगार और नर्स मिडवाइव्स और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट के एक सर्टिफिकेट, 1,00,000 रुपये नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के ज़रिए फराहम की गई बेशबहा खिदमात के तहत कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के वज़राए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। ये दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इकतसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वज़ीर आला C. Joseph विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नज़दीक वाक़ शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि

0: स्वीट्स कॉरपोरेशन के तहत शराब की 4,675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मंसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: फौजी वीरो एक बारी फिर स्वागत है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते यानी आकाशवाणी जलंधर ते आकाशवाणी पंजाब ते प्रोग्राम चल रहा सी फौजी वीरा लई। और अज असी गल कर रहे सी ओ गीतां दी जिहड़े गीत डरावनी फिल्मां च लए गए ने। जी हाँ, और बहुत सारे गीत असी सुन भी लए ने और होर बहुत सारे गीत मेरे कोल पए ने। इन्हां दा जो एक फिल्म अजिही भी है जिहदे कुछ गीत सानू लगदे नहीं कि हाँ भई ये इदां दीआं फिल्मां चों लए गए होणगे, क्योंकि वो गीतां दे जिहड़े बोल है ना वो बड़े अलग तरह दे ने। और नॉर्मल जे गीत लगदे आ, कोई विरहा दा गीत होएगा और कोई गीत होएगा प्रेमी दी याद दे विच, बट असल दे विच वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्मां रहियां ने या वो रहियां ने अपने दौर दियां भूतिया फिल्मां यानी कि हॉरर फिल्मां। ये भी एक जोनर है अगर मैं गल करा ते। फिर बहुत सारे गीत मेरे कोल पए ने, एक गीत होर सुना देवां। ये गीत इदां दी ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दा है और ये गीत अज भी उन्ने ही जड़े डरावनी आवाज़ दे नाल, मैं कहां कि डरावने तरीके दे नाल जड़ा है ना इनू गाया गया सी और सुनिया भी गया सी। जी मैं गल कर रहा हूं फिल्म गुमनाम दी। जी हाँ, गुमनाम फिल्म मनोज कुमार दी फिल्म। और इस फिल्म नू अपने समय का सस्पेंस थ्रिलर किया गया क्योंकि ये फिल्म शुरू इदा होंदी सी कि कोई डरावना जा माहौल है, एक टापू है और उत्ते सस्पेंस और डर का जड़ा मिश्रण सी ना बहुत टॉप लैवल का मिश्रण सीगा। और हुण जे मैं गल फिल्म दी कीती है तां तुसी समझ गए होगे गीत केड़ा चलान जा रहा। लता मंगेशकर दी रूहानी आवाज़ और उन्हां दी आवाज़ दे विच जदों इह गीत चलदा है ना तां अज भी रोंगटे खड़े कर दिंदा है। ते सुनिए फिर इह गीत जिहनूं गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म गुमनाम दे विचों लिया गया इह गीत तुहाडे सारिआं दे लई।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक

20 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है।

0: शिक्षक क्षेत्रीय समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जल्दी आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम चल रहा जी फौजी वीरा लई, और फौजी वीरो असीं गल कर रहे सी अज डरावनी फिल्मां दी। और ये नहीं कि डरावनी फिल्मां पुराने समय विच ही बनदियां सन, हुण भी बहुत सारियां डरावनियां फिल्मां बनदियां हैं। और जे मैं अज दे समय दी गल करां तां एक डरावनी फिल्म, जिहड़ी फिल्म नहीं एक पूरी सीरीज ही बन गई, और 5-6 तरह दी अलग अलग फिल्मां उस थीम ते बनियां। मैं गल कर रहा फिल्म राज दी। जी हाँ, इहदे 3 पार्ट आए ने, और तीनों जड़े पार्ट ने बा कमाल रहे ने। ते क्यों ना फिर प्रोग्राम दे आखिर दे विच इहदा ही कोई गीत सुनिया जावे, क्योंकि इन्हां दे सारे ही जड़े गीत सन बहुत वधिया गीत सन। राज नाम दे फिल्मां तां बहुत सारियां बनियां ने, लेकिन जिस फिल्म दी मैं गल कर रहा वो फिल्म सी राज 1, यानी जिहड़ी भूतिया फिल्म बनी सी, जिहदे विच तुसी डीनो मोरिया ते नाल उहनां दे बिपाशा बसु नूं वेख्या सी। ते उहनां दे भी बहुत सारे गीत जिहड़े ने मेरे कोल पए ने। ते आओ फिर उस फिल्म दा एक गीत जिहड़ा बहुत चर्चित गीत होया सी उह सुणदे आं। फिल्म राज चो लिया गया एक गीत जिहनूं गाया अलका याग्निक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ

0: रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार

0: शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से LPG से LNG की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,000

0: 9,067 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स थे। आकाशवाणी दाई जलंधर केंद्र है और समा हो गया है साढ़े प्रोग्राम रंगली धरती का, लोग गीतों का यह प्रोग्राम जिदे अज प्रसंग बाबा बंदा सिंह बहादुर सुनाया जाएगा और कलाकार होंगे मुख्तियार सिंह जफर ते उन्होंने साथी। तो आओ बस इस छोटे जे संदेश तो बाद सुनदिया प्रोग्राम रंगली धरती।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल रब दी रजा दे विच कहंदे ने के रहना पैंदे ते रब दी रजा दे विच रहंदे होए चिट्ठी साढ़े तक पहुंचाई है जी कोठली कलां तो लिख रहे ने जी यादविंदर सिंह ते सुखविंदर सिंह रविंदर सिंह मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह दौलत बाग मुरादाबाद तो जाफर हुसैन नीमा बेगम कासम अली नदी मली ते जनैद आबासी ते पिंड हैगा है जी गाजेवास ते लिखण वाले ने जी रणधीर सिंह मान मलकीत सिंह ते झंडा सिंह ते शादी सिंह ते गुलाब सिंह मान ते गुरचरण सिंह मान ते पिंड हैगा जी जंड वाला भीमे शाह ते पिंड नुकेरिया दे कहिंदे नेड़े पै जांदे ते नुकेरिया पिंड इन्हां दे नेड़े आ ते पिंड इन्हां दा जंड वाला भीमे शाह आ पर इन्हां ने शहर ते जिला नहीं दस्सिया जी ते लिखण वाले ने जी सुखचरण सिंह बराड़ ढाणी नत्था सिंह ते कश्मीर सिंह करनावल ते राणा चक पक्खी पिंड तो इन्हां दे नाल आ गए जी तीन पिंड आ गए इस चिट्ठी दे विच करतार सिंह करनावल भी इन्हां दे नाल ने ते श्री गुरु तेग बहादुर मार्केट है ते अहमदगढ़ मंडी मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना माफिया आफिया सना शमा रीना ते नासरा ते अख्तर शकीला रजिया सुल्ताना ते जाशमीन ते सराज अंसारी ते मोहम्मद जावेद अंसारी लिख रहे ने चिट्ठी ते फरमाइश कर रहे ने एमी विर्क की खूबसूरत आवाज़ दे लई

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठिया जी चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल ते धर्मशाला दे नेड़े पिंड कोटली अबलू श्री मुक्तसर साहब तो चिट्ठी सीताराम केसरी सुखा कोठे ढाबे वाला ते देवी कोटली किंदा कुंडा फार्म ते बराड़ मोटरां वाले ते इन्हां दे नाल हैगा जी शीला ते पिंड हैगा इन्हां दा कहिंदे गंगा ते काला हलवाई तरूप सर्विस स्टेशन वाले ते राणा डीजे वाले टाली वाला चट्टा तो साहिब सिंह सुखजीत कौर बलविंदर हरजिंदर ते गिद्दड़ बाहा तो मनजीत तनेजा ते परवीन तनेजा इन्हां दे नाल रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा ते ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबर राही ते महराज जहां ए लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो चिट्ठी फरमाइश इन्हां सारे की आवाज बहुत ही खूबसूरत सुनदे हां जी खुदी

प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी सारे पंजाबी फिल्म संगीत और चोणवी पंजाबी फिल्मों के चोणवे पंजाबी गीत तुहाडा दोस्त गौरव लेके हाजिर है। हुण जिहड़ा गीत तुहाडा सांझा करन जा रहे हां ना, उस गीत नूं वी तुसी बहुत प्यार दिता है और उस गीत की आवाज़ नूं जदों असी सुनते हैं ना तां असी पुराने पंजाब दे वल नूं पहुँच जांदे हां, क्योंकि वह गीत है ही इदां दा। जदों जदों वह गीत चलिया उदों उदों उस गीत नूं प्यार दिता गया और उस गीत दे विच शमशाद बेगम ने और शमशाद बेगम दे नाल मुहम्मद रफ़ी जी, जां इन्हां दोनों की जिहड़ी है जोड़ी है ना, इन्होंने कमाल कीता है। फिल्म है यमला जट, पुरानी पंजाबी फिल्मों के मील का पत्थर साबित हुई है फिल्म। और इस गीत नूं लिखिया है वर्मा मलिक ने और संगीतबद्ध भी किया है वर्मा मलिक ने। तो आओ फिर सुनिए ये अमर गीत

जो प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी फिल्म संगीत और वक्रे वक्रे पंजाबी फिल्मों के विचों तुसी वक्रे वक्रे गीत सुन रहे हो। प्रोग्राम का आखिरी गीत चलान जा रहे हैं। उस आखिरी गीत

प्रभु दे अनन प्यारे भगत भगत नामदेव जी द्वारा उचारित है। भगत नामदेव जी दुखां दा नास करन वाले करता पुरख नू नमस्कार करदे हन, उदे अग्गे सीस निवांदे हन। नमस्कार करन दा रवायती ढंग दंडवत होके नमन करन दा सी। राग बिलावल विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी अकाल पुरख दे चरना विच बेनती करदे ने कि हे प्रभु जीओ, आप जी मेरे प्राणा दे आसरे हो, मैं आप जी दे अग्गे दंडवत होके नतमस्तक हुंदा हां ते आप जी तो अनेकां वार बलिहार ने जांदा हां। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार दंडौत बंदना अनेक बार जाओ बार है। सरवण करदे हां भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए

प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार दंडौत वंदना, अनेक बार जव बार है। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उना दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1301 ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा कानुड़ा राग विच उचारित शब्द सुशोभित है, जिस विच आप जी नर रूप विच अकाल पुरख दे अवतार नू ते कुल मनुखां दी पत रखण वाले नरपत नू नमस्कार करदे ने। आप जी उस मुक्तिदाता अकाल पुरख तों बलिहार जांदे ने। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाई है, आप मुकत मोहतार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां द्वारा गायन कीता होया।

0: नारायण नरपत नमस्कार है। इस शब्द का गायन किया सी डॉक्टर अलंकार सिंह होरां। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरलाल सिंह।
1: कानड़ा महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे रहाओ। कवन कवन कवन गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारे, लाख लाख लाख कई कोरे, को है ऐसो बेचारे। विषम विषम विषम ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यो चाख गूंगा मुस्कारै। ए पावन शब्द शहीदां दे सिरताज, बाणी के बोहित पंचम पातशाह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दा कानड़ा राग अंदर उचारण कीता होया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1301 ते सुभाए मान है। रहाओ दियां तुकां अंदर पंचम पातशाह किरपा करदे हन। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे रहाओ। नरपत तो भाव है नरां दा पति, जीवां दा मालक। पंचम पातशाह किरपा करदे हन कि उस अकाल पुरख परमात्मा नूं नमस्कार है जो सब दा मालक है। मालक की करदा है, जिवें दुनियावी मालक अपने नौकरां दा ध्यान रखदा है, इस तरह परमात्मा ऐसा मालक है जो केवल बंदियां दा जानवरां दा ही नहीं सारी सृष्टि दा ध्यान रखदा है, सब दी पालना करदा है। रामकली राग अंदर पंचम पातशाह बचन करदे हन, कारण करण करीम सर्ब प्रतपाल रहीम। अल्लाह अलख अपार, खुद खुदाए वड बेशुमार। हे जगत दे मूल, हे बख्शिश करन वाले परमात्मा जी, सब जीवां नू पालन वाले, सबना उत्ते रहम करन वाले, तू सबना दा

एस तिसह आदेस, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। आप जी सरवण कर रहे सो भाई इकबाल सिंह ते उना दे रागी जत्थे पासों इना पौड़ियां दा गायन।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब

0: अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम के 6:05 हो चुके हैं। आ हुण जानते हैं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। नरमे दे कीड़े दी रोकथाम इस बारे जानकारी देणगे विजय कुमार। झोने की सीधी बिजाई लई वख-वख मशीनां दी वरतों इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर अजैब सिंह। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तों अलावा थोड़े मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश की जाएगी। होम इज वेयर द हार्ट इज। वार्ताकार होंगे सोनिया एब्रोल।

रात 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली के अंदर तो। रात 9:30 बजे प्रोग्राम पेश करांगे खेड संसार। आज के इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे अर्जुना अवार्डी ट्रिपल जंप एथलीट अरपिंदर सिंह होरां नाल कीती गलबात। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होएगा सुरसाधना। अज के इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे बी एस नारंग का गाया राग रागेश्वरी। रात 10:30 बजे तुसी आनंद माणोगे प्रोग्राम सरगम का। सो ऐसी अज रात तक के बाकी रहेंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। इस तों इलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
4: पुलिस
5: मिस सीमा।
4: हां जी,
5: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तो कारा जावांगे। हां
4: क्यों? पर मैं
5: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
4: इन्ने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
4: जेल तो तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
5: ओए,
4: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस बैंक RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
6: हेलो मम्मा।
4: हाय,
7: RBI कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
8: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो देशभक्ति समूह गान।

0: हाँ जी बाल साहब, अज ना एक जिदा अपना 90 साल का सिलसिला है, सुनी है सरदार मनप्रीत सिंह बादल होरां
1: जी
0: आकाशवाणी के 90 साल इस से बापत
1: सुना दियो जी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com

0: com या news on air.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है, पेशे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ, जिंदगी दुनिया दे हर एक इंसान दे कोल है। इस वक्त जेड़ा जी रहा है, जेड़ा साह ले रहा है, हर एक दे हिस्से कुछ टाइम मुकर्रर होके मिलिया होया है। जिंदगी दा एक फिक्स टाइम है, लेकिन सारियां दे लई ए एक तरह की पहेली है कि उस दे कोल किन्ना क टाइम है। असी गरंटी दे नाल किसी की जिंदगी दे बारे कुछ नहीं कह सकते, किसी होर दे बारे तक ही असी अपने बारे भी नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी इन्नी रह गई है। जिन्नी तो बीत गई, जिन्नी जी ली, वह तो सानू पता है कि इन्ने साल गुजर गए, लेकिन किन्ने रह गए उस दा कुछ पता नहीं। वह एक पहेली है साडे लई। और दुनिया दे विच आपां देखदे हां कि अरबां इंसान ने और अरबां लोकां दी अपनी जिंदगी है और उन्हां जिंदगी दी अपनी ही कहानी है। किसी की भी कहानी किसी के नाल हू बहू नहीं मिलती। हाँ, कुछ एक इंसीडेंट जरूर मिल जाते हैं, कुछ एक हालात या कुछ एक मुश्किल या सुख दुख कुछ जरूर मिलते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी नहीं मिलती। एक कहानीकार है जिसने हर एक की जिंदगी बिल्कुल वक्री लिखी हुई है और हर एक नूं इदां लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी नहीं है, अधूरी है। और यही इस जिंदगी की सच्चाई है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कि रब ने किसी की भी जिंदगी यहोजी नहीं बनाई कि हर चीज़ जो मंगे उसनों मिल जाए। कुछ ना कुछ साड़ी जिंदगी दे विच अधूरा रह ही जाता है और सब दे नाल इदा हुंदा है। कई बार सानू इदा लगता है कि सिर्फ मेरे नाल ही इदा क्यों हो रहा है। साड़े मन दे विच कई बार इहोजे सवाल आते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे नाल ही इदा क्यों हो रहा है, मैनू ही यह दुख क्यों मिल रहा है, मैनू ही इन्नियां मुश्किलां क्यों मिल रही हैं। लेकिन असी दूजियां नूं नहीं जानते, उन्हां दी जिंदगी दे विच भी होर तरह दियां मुश्किलां हुंदियां ने, होर तरह के दुख हुंदे ने, होर तरह दियां अड़चनां हुंदियां ने। हर कोई कोई भी जड़ा है वह पूरा नहीं है, किते ना किते अधूरी जिंदगी हर कोई जी रहा है। तो इसे ही अधूरेपन दे नाल जीना, उसनों ही जिंदा दिली किया जाता है। और जिंदगी इसे तरह की है जी, जिंदगी हसीन ता ही बनेगी। जिहड़ियां छोटिया छोटिया चीज़ा, जिहड़ियां छोटिया छोटिया खुशियां साड़ी जिंदगी दे विच आउण, साडा ध्यान साडा फोकस उन्हां वल लगे। जेकर दुखां वाली देखते रहांगे तां जिंदगी कदी भी हसीन नहीं लग सकती, कदी भी चंगी नहीं लग सकती। तो इस करके अपना फोकस उधर रखिए। तो पहेली की गल की सी, पहेली इस गाने दे विच भी बहुत सारियां हैं ने और म्यूजिक भी बहुत सोहना है। तो आओ फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के नाल, सुनते हैं।

हुण तुसी सुन रहे सी शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च BS नारंग दा गाया राग रागेश्वरी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। रात दी 10:30 बज चुके ने। पेशे प्रोग्राम सरगम। इस प्रोग्राम दा पहला गीत फिल्म तेजाब तों आवाज़ां नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार ते साथियां दियां। गीत दे बोल लिखे जावेद अख्तर ने ते संगीतबद्ध कीता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सरगम दा अगला नगमा पेश है फिल्म आपके साथ तो, आवाज़ लता मंगेशकर दी, गीत दे बोल लिखे आनंद बख्शी ने, ते तर्ज दिती लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित नियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

0: बिल्कुल जी, मच्छरदानी लेते हुए मच्छर ने काली तोड़ के गीत जगह रहे सुरेंद्र कौर जी ते रंगीला चट साहब की आवाज़ के बीच ते प्रोग्राम चल रहा जी। सुगात ते कॉल्स भी लगातार दोस्तों दी आ रही हैं क्योंकि मच्छर जड़ा वो तंग तो मेरे ख्याल करता है, पर इस वेले इस मौसम के अपना बचाव रखना जरा बहुत जरूरी है। सो अगली तो कॉल देखते हैं किहड़े दोस्त वालों आई है साढ़े को। हैलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात। हाँ जी प्रीतम जी, की हाल चाल ने जी थोड़े? आवाज थोड़ी कट रही है जी। मैं क्या की हाल चाल ने जी? साडे बहुत वधिया ने, अज बहुत दिनों दे बाद आए हो, किथे रह गए? चलो बिलकुल ठीक है जी। ते केड़ा गीत सुनोगे जी? अज गीत केड़ा सुना दिए? मैं भी जट लुधियाने का। बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश मैं पूरी करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू जी।

सो बिल्कुल जी, मैं भी जट लुधियाने दा। कितना जगह है तुसी? हरचरण गरेवाल और सुरेंद्र कौर जी की आवाज़ से भी प्रोग्राम चल रहा है जी। सौगात के दोस्तों के मैसेजेस साढ़े तक पहुँच रहे हैं जी। अगला मैसेज साढ़े को पहुँचा है जलालाबाद पछमी तो भेजा है सुरेश गगनेजा जी ने। इन्हों के नाल ने जी पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। तो इस नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी। ये मैसेज देखते हैं कितों आया है। ये मैसेज साढ़े को पहुँचा है जी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो भेजा है टी डी मल्होत्रा जी ने। इन्हों के नाल ने जी रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। ते एक मैसेज होर पहुंचा होया जी। इस मैसेज में भी आप ही शामिल कर लेंगे। ये आया जी साढ़े को पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो भेजा है हरजिंदर शिंदा जी ने। इन्हों के नाल जी जसवीर, जसी, सीता और गीता। तो आओ जी फिर इन्हों सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत बब्बू मान साहब की आवाज़ से।

0: बिल्कुल ठीक कशिश आते दो चा दिल तो टुटते जरूर ने कितने जगह नक्षत्र के साहब की आवाज सुबह ते प्रोग्राम सुगा चल रहा जी और दोस्त भी पहुंच चुके ने। हेलो
1: हेलो, नमस्कार करण जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच।
1: श्री गुरु रविदास नगर मोड़ तो कीर्तन रख रहे हैं जी।
0: हाँ जी रसगनिया साहब, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: ठीक है जी, तू सुनाओ। आओ ना,
0: जी
1: ठीक है
0: साढ़े
1: जी।
0: भी बहुत वधिया ने जी, बहुत अच्छे ने, तो थोड़ी कॉल आ गई, हाल चाल होर वधिया हो गए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सो केड़े गीत की फरमाइश लेके पहुंचे फिर अज?
1: आज फिर कंठ फिर साहब का गीत सुना दो, जान गीत।

0: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश तक लेकर जा रहे हैं, कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: बहुत थैंक यू,
0: थैंक यू
1: चलो
0: जी,
1: जी,
0: थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असी व्हाट्सएप मैसेजेस के वाल भी मार लेने हैं जी, कि कड़े दोस्तों के मैसेज आए हैं। मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी, VPO जी का, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो हरजिंदर सिंह बराड़ जी का। तो इस नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचे है जी, ये मैसेज देखते हैं कितों आया है जी। ये मैसेज आया है साढ़े को बाजवा कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम चंद जी का। इन्हों के नाल है जी अनमोल दीपक ते गुरदास मान साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है जी। तो बिल्कुल इन्हों की फरमाइश भी असं जरूर पूरी करांगे इस गीत तो बाद। ते एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी, मैसेज आया है मेरा मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान जी वालों। इन्हों के नाल है जी श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल धीमान, कुंजी धीमान, पर्व धीमान, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत धीमान, राजेश धीमान, कुंज धीमान, ते इन्हां दे पूरी फैमिली। सो आओ जी फिर इन्हां सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं, पहला कंठकले साहब की आवाज़ में गीत, तो फिर उस तो बाद अगला गीत असी गुरदास मान साहब की आवाज़ में सुनांगे।

तुर्की बाणी इलाही इल्हाम है, शब्द है, सद है, ब्रह्म है। सदनू आवाजा भी क्या जानदा है, आवाज भी क्या जानदा है। अकाल पुरख नाल स्नेह रखण वाले प्राणी, सच्चे गुरु नाल स्नेह रखण वाले प्राणी, सच्चे गुरु दा बचन सद दे रूप विच सरवण करना लोचदे ने। उते ऐसे गुरु तो कुर्बान जांदे ने जिदा सोना शब्द सरवण करके, जिसकी महिमा सरवण करके मन मौलिया जांदा है। ऐसे गुरु नू ओ अपना मन अर्पण करदे ने ते वारने जांदे ने। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे आ भाई रविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया

0: सदड़ा सुनी जय पाई, जी को बह अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: सोही महला पहलम, जोगी होवे जोगवे, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदड़ा सनीजे पाई, जे को बहे अलाई, रहाओ जैसा बीजे सो लूने, जो खट्टे सो खाई, अग्गे पुछ न होवई जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई सो दम बिरथा जाए, ए तन वेची बै करी जे को लए वकाए, नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाओ। ए शब्द पहले पातशाह जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का उच्चारण किया होया सोही राग अंदर सुशोभित है। इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी ने एक अकाल पुरख की सिफत सलाह ते नाम बाणी नाल जोड़िया है। सतगुरु शब्द के रहाओ वाली पंक्ति विच प्रमाण करते हैं, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई जे को बहे अलाई रहाओ। हे मेरे प्यारे प्रभु, हर को मनुख तेरी खुशी लैण वास्ते मुक्ति की प्राप्ति वास्ते वखरे वखरे कर्म करता है, कोई जप कोई तप कोई योग कमाउंदा है, पर मैं मूर्ख तेरी सिफत सलाह रूपी बाणी संदेशा ही सुनता हाँ। मैं तेरी नाम बाणी नाल ही जुड़िया हाँ, जे को मैंने तेरी सिफत सलाह सुनावे। श्री गुरु रामदास जी बाणी विच प्रमाण करते हैं, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर भज मन मेरे तर भवजल तू तारी रहाओ। अगे सतगुरु शब्द विच प्रमाण करते हैं, जोगी होवे जोगवे, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए। जेड़ा मनुख जोगी बनता

कहा लो भाई है आन कौ, ईत ऊत प्रभ सदा सहाई, जी संग तेरे काम कौ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: दुख दार सुख रोग पया जा सुताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जा हो करी ना होई। भले हारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है। खत्री शब्दन सूर शब्दन सूत्र शब्दन पुरा करत है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा।
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास दे बस्य जे को जाने पेयो नानक ता कदास है सोई निरंजन दियो महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल है जल बिन कुंभ ना होए।

0: अतधीर गत मुच जे अभ्यास कर जा इंद्रा से कित फल फिके फुल बक बके कम ना वे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए धरता राजू तो लिए निवे सगौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा हे सीसनी वह है क्या थी है जारी दे कुसु दे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल्पू जिस भगत समादम मुख चूट विभूखन सारंग कृपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्राह्मण करवन सब फोकट नेचो करवन कहु नानक नेचो त्यावे विन सतगुरु।

मानस खाने करे निवास छुरी बगैन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पियावे साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म तरम कड़े रा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती तो कखाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र ले नील वस्त्र पर होवे प्राण ले स्थान ले पुजे पुराण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके पर किसे न जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा अन साडा फिटा तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली प्रेन कहु नानक सच त्याई है सुच हो वै।